मर जाना चंगा है मर मर जीण तो। डसके वाले मुकद्दर नू ना रोक हुण पीण तो। बड़ी है खराब छड़ दवांगे शराब,

जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, वो रिश्ते नाते सब तोड़ के सुटते, प्यार वफा सब जड़ तो पुटते, पीछे कौड़ी पजदा फिरदा, पता न कोई पलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, लेखा लिखिया मेट न सकदा, हो लेखा लिखिया मेट न सकदा, की होना कल वेख न सकदा, ता ही हिरदा दुखड़े चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना, तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए, जदों समय दा चक्कर चलदा ए।

मैं तेरा पारदानी पानी, मैं तेरा राजा तू मेरी रानी। आ एक दूजे च समाइए नी आपां दोवें हाणो हाणी।

बस एक बारी दर्श विखा, हाय एक बारी मिले सजना, हाय एक बारी मिले सजना।

0: दो नहीं चार चार हाथों से आत्मसम्मान व अस्मिता को संभालना सिखाऊंगी। पर फिर भी दर्द से तड़पती हूं, फरेबी नरपिशाचों दुशासनों के अन्याय और घृणित कुकृत्यों पर मैं रुकूंगी नहीं। सब सिखाऊंगी मैं कि दुर्गा बनकर कैसे अपनी रक्षा की जाती है, अन्नपूर्णा बनकर कैसे भंडारी बना जाता है, कल्पना चावला बनकर कैसे पंख फैलाया जाता है और असीमित अंतरिक्ष को नापा जाता है। सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को, सब कुछ सिखाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को।
1: तो बारह तो बाद हूँ असि थानू फिरोजपुर लेके चलने, फिरोजपुर दे विच साडे शायर रहिंदे ने कमलदास जी बड़ी धीमी सुर दे विच रह के अपनी रचना पेश करदे ने, सरोते उन्हां नू प्यार भी दिंदे ने, ते इस बार फिर वो साडे सद्दे दे उत्ते हाजिर हो रहे ने। आस करदे आ पहलां वांग ही उन्हां नू सरोते साडे प्यार देणगे। कमलदास शर्मा जी थोड़ा दुआबा रेडियो दे मंच ते निघा स्वागत है जी।
2: लिखे है मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, लिखे है मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे।

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे हैं मन ने। पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती मेरे संग चल,

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी।

0: जब जब थिरकते पांव धरती पर, लिखे जो मन ने बड़े यतन से, तेरी महिमा में कुछ नगमे। सुने तुमने भी इस मन से, जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे जो मन ने।
1: कमल दास जी तो बाद हूँ असि थानू पटियाला विखे डॉक्टर देवेंद्र कौर जी नाल मिलवाण जा रहे हैं। देवेंद्र कौर जी जेडे कि संगीत दे अध्यापक वजों सेवा मुक्त हो चुके ने ते साडियां महफलां दे विच आंदे ने ते साडे श्रोतियां दा मन परचौंदे ने। कला मन ही नहीं परचौंदे, उन्हां दे दिलो दिमाग

लुक लुक के सौदे करना है, लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे पर्दा है। लुक लुक के सौदे करना है, बिन मेहनत बोझे भरना है। साधा नु चोर बनावे तू ना अल्लाह कोलों डरदा है।

चार दिना दा मेला सजना बहुती देर नी रहना, जो बेचेगा कमले बंदिया, जो बेचेगा कमले बंदिया ओए ओए वड़ना पैना। उत्थे अमलां दे होने ने नबेड़े, किसे ना तेरी जात पुछनी, उत्थे अमलां

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।